0: एक तरफ तराजू
1: क्या शू,
0: आ तेरी हंसी मेरे आंसू
1: क्या शू,
0: आ घुट घुट की क्यों सांस लू
1: क्या शू,
0: उसे देगा क्या हिसाब
2: तू। तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

गरुड़ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज अश्वपति गजपति भूपति गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति श्री श्री श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आणि मी आहे आपला मित्र आर जे संजय।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

वो करीब बहुत है मगर कुछ दूरियों के साथ, हम जी तो रहे हैं पर बहुत सी मजबूरियों के साथ। संध्याकाळचं आणि तन्हाई जाणवण्याचं काय नातं आहे कोणास ठाऊक, म्हणूनच त्याला कातरवेळ म्हणत असावेत कदाचित। दिवसभराच्या थकव्याची भैरवीच जणू सुरू होते आणि ती ऐकून सुरांना साथ आणि नकळत हाताला हात देणारी व्यक्तीच समोर येत नसेल तर। आंसुओं के बुंदे है या आंखों में नमी, ना तो ऊपर आसमां दिख रहा है ना नीचे जमीन। कैसा है ये अजीब सा मोड़ जिंदगी का, उसी की है जरूरत और उसी की है कमी।

सिर्फ एक हम ही है तेरे दिल में, यही गलत फहमी बर्बाद कर गई हमें। तुमच्या उपस्थितीची जाणीव आणि गैरहजेरीतली उणीव अगदी प्रकर्षानं जाणवणं म्हणजेच तुमचं अस्तित्व। ते जर कोणाच्या आवडीनिवडीवर, सवडीवर आणि मुडामुडीवर बदलत असेल तर काय अर्थ आहे। मुद्दत हो गई चुप रहते रहते, कोई दिल से सुनता तो हम भी कुछ कह जाते। आज रात जी भर के रो कर देख लूं जरा, सुना है कोई खरीदार मिले ना मिले, रात के अंधेरे में दर्द भी नीलाम हो जाते हैं।

कभी छोटे कभी खड़े कभी खोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले।

0: ज्यादा वफादार है। आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।